0: जमीन का निचोट मारना जोड़ी कालू
1: बेसर अगी के चैट में
0: कंपटालू ने जोमिरा जोम बाउलो इन रोकियों में चप्पल ने जैसे जैसे बांपुस इन रिम दक्कन ये मौके कालू सुमा और सब कुछ आगे न मुट्ठ आगे न वार्ता है